0: क्या बात है।
1: रुक सके वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, रुक सके वक्त तुमने जो

ये जीवन भला है ये किस काम का, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले,

सदा उसकी ही मौज में खुश रहे, जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: ಪಾಪಾ ರೇಡಿಯೋ.
1: जी दोस्तों सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो के मंच उत्ते निघा स्वागत है। लैके हाजिर हाँ तुहाडी कचहरी च फिर तो एक बार नवा नवेला प्रोग्राम जिंदगी नामा हाल दुनिया। आप सब नू आदाब सलाम नमस्ते ते प्यार भरी निकी सत श्री अकाल। दोस्तों उम्मीद करते हैं सब राजी खुशी होंगे ते गल्लां बातां अज दी शुरुआत तुहाडे नाल। वीरवार वाला दिन है ते 30 जुलाई 2026 का दिहाड़ा है जिस दे विच अज दे विचार तो लैके देश दे दीआं खबरां ते गल्लां बातां नाल दी नाल सिलसिला जारी रहेगा। ते समा इजाजत देवेगा तां कोई ना कोई तुहानू कहानी सुनाउण दी वी कोशिश रहेगी। स्टूडियो दा नंबर +358 44 976 1962 है ते लाइना कुछ ही पलां तक तुहाडे लई खोल दित्तियां जाणगियां। बहुत सारे पंजाब दे इशू जिहड़े ने उह फिर तों जिहड़े ने उठण लगे है ते उहनां दे वल नूं चर्चा करन दी कोशिश रहेगी ते नाल दी नाल होर सारा सिलसिला चलावांगे ते गल्लबात दी शुरुआत करदे हां तुहाडे नाल। ते समा ते स्थिति फिनलैंड दीआं घड़ियां दे उत्ते इस वक्त दुपहर दे जिहड़े अपने न्यूयॉर्क तक टोरंटो दीआं घड़ियां दे दुपहर दे समय दे मुताबक 12:00 ते अपने 8 मिनट दा समा है। भारत दे विच रात दे 9:38 ते फिनलैंड दे विच इस वक्त शाम दे 7:08 घड़ियां दे उत्ते समा है। बाकी यूरोपियन कंट्रियां दे विच इसे तरह ही 6:08 ने ते यूके दे विच शाम दे 5:08 दा समा जिहड़ा दर्शा रहीआं ने घड़ियां। लो फिर दोस्तों दोस्तों तक जरूर पहुंचाया करो प्रोग्राम, यही साड़ी उम्मीद है ते यही गुजारिश है। ते हुण तो लैके 2.25 घंटे तुहाडा मेरा राबता इस तरह बरकरार रहेगा ते उम्मीद करते हैं तुहाडे तक आवाज़ ते अंदाज़ वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा पहुंच रहा होगा। लो फिर शुरुआत करते हैं सब तो पहला अज दे विचार दे नाल। अज दे विचार की गल करिए ते 30 जुलाई का विचार 2026 का कहिंदे ने कि किसे दा गुलाम रहना सब तो वड्डी कायरता है ते अणख दे अणख वाले सूरमे कदे गुलाम नहीं रह सकते ने। 30 जुलाई 1836 का जो जिक्र करते हैं तो अमेरिका दे विच अंग्रेजी का पहला अखबार शुरू किया गया सी। 1857 दे विच देश भगत प्रकाश पांडे वालों अंग्रेज अफसर मेजर स्पेंसर का जड़ा कतल किया गया सी। 1909 दे विच राइट भरावां ने फौज दे लई पहला जहाज बना लिया। 1927 दे विच शहीद उधम सिंह नूं अमृतसर दे विच बिना इजाजत दे 2 रिवालवर 1 पिस्तौल ते गदर दी गूंज दा जिहड़ा परचा रखण दे दोष विच गिरफ्तार कीता गया ते 5 साल दी उहनूं सजा जिहड़ी सुनाई गई। 1930 दे विच पहला विश्व फुटबाल कप दक्षणी अफरीका दे देश उरगवे दे विच जिहड़ा शुरू होया सी फीफा वर्ल्ड कप। 2012 दे विच भारत दे विच पावर ग्रिड फेल होण दे कारण 30 करोड़ लोग जिहड़े सन बिजली दे बिना जिहड़ा रहे सन। 2012 दे विच 30 करोड़ लोग। इस तरह अज इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप भी है जिस दे विच यूएनओ असैम्बली ने मित्रता दिवस दोस्ती का दिवस जिहड़ा 27 जुलाई 2011 नूं शुरू किया ते दिन हर साल 30 जुलाई नूं मनाउण दा जिहड़ा फैसला किया सी। पर भारत दे समेत कुछ देशां दे विच अगस्त दे पहले ऐतवार नूं जिहड़ा है मनाया जांदा है। गल करदे आं इक ऐसे खूह दी जिस दे विच बहुत कुछ वापरिया। कालियां वाला खूह, शहीदां वाला खूह, अजनाला भी उहनूं कहा जांदा है। 1857 दे गदर दे समय 26 बंगाल इनफेंट्री जिहड़ी सी रेजिमेंट दे 500 फौजी प्रकाश पांडे वालों अंग्रेज अफसर दे कतल दे मगरों लाहौर स्थित मियां मीर छौणी दे विचों अगले दिन बगावत करके रावी दरिया पार करके अजनाले लागे पहुंच गए तो अंग्रेजी फौजां ने पिंड ढड्डियां ते सौफियां लागे जिहड़ा सी घेर लिया। उन्हां नूं उन्हां दे विचों 218 नूं गोलियां मार के शहीद कर दिता ते 282 नूं अमृतसर दे DC फ्रैडरिक हैनरी कपूर दे प्रेमनाथ जिहड़ा सी तहसीलदार की अगवाई दे विच गिरफ्तार करके तहसील दे एक जेल दे विच जिहड़ा वर्गा जिहड़ा ही कमरे सन छोटे कमरे दे विच लिया के बंद कर दिता ते कुछ साह घुटन दे कारण मर गए ते बाकियां नूं गोलियां मार के खूह दे विच सुट दिता गया। इस नूं कालियां वाला खूह इस करके कहिंदे ने क्योंकि अंग्रेज भारतीयां नूं काले कहिंदे सन ते खोजकर्ता सुरेंद्र कौछड़ उन्हां ने फरवरी 2014 नूं लोकां दी मदद दे नाल खूह दी खुदाई करके उस दे विचों अस्थियां ते होर निशानियां कढ़ियां सन ते अस्थियां जड़ियां सन निशानियां सन ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ 30 ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲਿਆਂ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਵਿਰਾਸਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। OCI ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ OCI ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ OCI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PIO ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। PIO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਂਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ PIO ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ OCI ਕਾਰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ 2015 ਦੇ ਵਿਚ PIO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OCI ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। OCI ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ OCI ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। OCI ਕਾਰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ

0: तुम
1: वाके
0: तोड़ा
1: क्या बात है जी, क्या
0: क्या
1: बात है
0: तबड़क तबड़क।
2: नहीं
1: जी
2: असल देना शमी भाई जी, वो ऐ हुंदा ना बच्चिया वांगू
1: जी
2: रोना उदो चाहुंदा हुंदा बंदा, भी जदों उनू कोई समझ
0: ओ
2: नहीं
0: दे, ओ
2: आउंदी गल
1: दे।
2: वी हुण करे
1: जी
2: की ते
1: बिल्कुल
2: जावे की
1: बिल्कुल
2: ते।
1: है, बिल्कुल है।
2: स्ट्रीम है
1: जो भी
2: बच्चे भी फिर
0: स्ट्रीम है
2: ओवे
0: ऑल
2: हुंदे ने।
1: जी
0: बिल्कुल ओ जड़ी इनोसेंस है, ओ जड़ी भोलापन है, ओ जड़ी
1: जी
0: सादगी है, निष्फलता है,
1: बिल्कुल है
0: ओदा तो कोई जरूर बात
1: जी,
0: नहीं।
1: बिल्कुल है जी। थैंक यू
0: ओ
1: मुकद्दर जी, बहुत
0: तो
1: बहुत
0: शीशा
1: शुक्रिया
0: देखने
1: भाई।
0: वाली गल है।
1: थैंक यू, सत श्री अकाल
2: ठीक
1: जी।
2: ठीक है शमी भाई जी, आपां
0: जी
2: तां अपनी हाजरी लवा
1: जी
2: चली
1: शुक्रिया जी,
2: ते
1: शुक्रिया
2: मोहब्बत
0: शुक्रिया,
2: जिंदाबाद ते जिंदगी
1: जिंदगी
2: जिंदाबाद।
1: जिंदाबाद
2: सत
1: जी। थैंक यू जी।
2: श्री अकाल,
1: ते
0: जिंदाबाद,
1: शमी जी अगली लाइन दे
0: सत
1: उत्ते
0: श्री अकाल।
1: आपणे नाल जुड़े ने जस्सी चाल जी, जुड़े ने जी मलेरकोटला तो, उन्हां दी गल बात सुनदे आ। सत श्री अकाल जी, बड़े दिनां बाद
0: जी
1: निघा स्वागत है जी।
3: हाँ जी, धन्यवाद वीर जी, दोनों वीरां नूं सत श्री अकाल
1: सत श्री
3: जी।
1: अकाल जी, सत श्री अकाल जी, जी आनु जी।
0: सत श्री अकाल जी।
3: हाँ जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ये नमः।
1: वाह
3: हुण
1: जी,
3: मेनू एदा अर्थ ना
0: आहा हा
3: दसो, मेनू भी नहीं
0: नहीं
3: समझ आ
0: पर
3: रहा अर्थ ना,
0: बढ़िया लग रहा है, बहुत
1: मैं
0: बढ़िया जी।
1: नहीं बहुत वधिया लगदा सुनन च जी। हाँ जी
3: हाँ
0: जी,
3: जी
0: ऊ भी
3: जी ये
0: वधिया
3: मैं
0: जी,
3: कह,
0: मतलब अर्थ भी ठीक है
3: हाँ जी टाइम ज्यादा हो गया ना, ते मैं
0: जी।
3: पहला शिकवा कर दवा भी बड़ी रोंडी पिटदा होना जद मुकद्दर निकलिया हुंदा खेडदा होना ना न्याणिया नाल, जे इथे
1: जी
3: इंटरनेशनल टोकियो ते इन्नी रोंडी पिटदा उथे की हाल करदा होना, फड़ फड़ के ढोलंदा होना।
1: उते
3: चलो
1: बैट
3: एनीमो
1: चक के भज जांदा होना जी। मैं चला जी, मैं पढ़ना जाके जी, मैं चला
3: हाँ
1: रोटी
3: जी
1: खान,
3: हाँ जी
1: माता ने आवाज मार ली पिछो जी।
3: हाँ जी शमी वीर जी ने गल की थी व्यास जी दी,
1: हाँ जी
3: ते व्यास जी
0: जी
3: ते मैं भी आनी हूँ थोड़ा जो, ते मतलब पूरा मतलब सही ढंग ना नहीं मैंने कह जाना, पर फिर भी जो मैं कहना चाहनी है ना
1: जरूर जी,
3: भी राजा परीक्षित सी ते उन्होंने भविष्यवाणी हुई सी भी अज तो 8वें दिन तेनों सप ने डस लेना है।
1: जी
3: सप नू तक्षक भी कहा जाता है, भी तक्षक ने तेनों डस लेना है,
1: जी
3: ते ओ सारे को
0: अक्षर
3: फिरदा रहा भी मतलब धार्मिक थावां ते पुछदा रहा भी एदा फिर हल की है।
1: जी
3: वो कहंदे हल कोई तक्षण तक्षक ने तेनू दसना है, तेरी मौत भी लाजमी है,
1: जी
3: पर तू देवी भागवत दी कथा सुन 8 दिन, ते एदे नाल तेरा अगला जन्म सौर जाऊगा।
1: जी
3: इथो तक असीं कहानियां सुनदे आ पढ़दे आ, कथा हुंदी 8 दिन मंदिरां विच जां महल्यां च भी हुंदी है, ते पर जेडी उस तो अगली गल ना सारिया धर्मां दे विच रलेवां है, प्योर देसी घ्यो कोई नहीं दिंदा।
1: जी
3: उस तो बाद जेड़ा परीक्षित राजे दा मुंडा सी ना जेड़ा, उन्हें डर दे मारे ने आके बहुत सारे नायाब सप सारे तकरीबन उन्हें कोशिश की थी भी सारे सप मरवा सिटे, उन्हें
1: जी
3: खत्म तो नहीं
0: सप्पा
3: कर
0: का वैरी
3: सके
0: बन
3: पर
0: गए
3: उन्हें बहुत सारे। हां
1: जी,
3: जी
0: जी बिल्कुल सप्पा का वैरी बन गया जी, बिल्कुल
3: हाँ जी हाँ जी, ते फिर उन्हें किसी ने दस्या भी तो धरती इन्हों की हुई है,
1: जी
3: ते जेड़ा कि अंग राज करन दी गल कीती है, मैं एदा भी थोड़ा बहुत सर्च करूंगी भी अंग राज क्यों कहा जांदा करन नूं,
1: जी
0: जी
3: ते बहुत मतलब जप तप बहुत हुंदा सी, गुरुआं दी बहुत महानता हर धर्म च
1: जी
3: हर शोभे च, ते जेड़ा राजन वीर जी गल करके गए ना खुसरो निजामुद्दीन दी,
1: हाँ जी
3: ते एदी क्वालिटी बहुत सोहनी है, मैं तुहानू किसे दिन सुनाऊंगी फिर जो
1: जरूर
3: अपना
1: जी,
3: शनिवार एतवार होगा।
0: जी जी
3: ते ये ना अपने इथो असि मुस्लिम लोकां च रहने आ ना, ते पहला हुंदा सी भी ये 5 टाइम दे पक्के नमाजी हुंदे सी, ते इन्हां दे मत्थे ते निशान बन जांदा सीगा।
1: अच्छा जी
3: हां जी काला
0: जी
3: जिहा
0: हाँ
3: निशान मत्थे ते गब्बे बन जांदा सी, ते उसे तो ओ लिखिया होया सी गाना
1: जी
3: छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाए के,
1: जी
3: उन्होंने ने लिखी हुई
0: ओहो
3: कवाली, ए छाप कहने उसे छाप नु कहा गया है, जेडी छाप हुंदी है ना जेडे
1: जी
3: मुसलमाना दे मत्थे दे बन जाती है,
1: जी
3: ते तिलक हिंदू लोग
1: जी
3: लांदे ही ने है ना, ते ए
0: ओ
3: छाप ना
0: लौंडे
3: अजकल जब हिंदू हिंदू मुस्लिम दे झगड़े पैन लगे ने
1: हाँ जी
3: उदों दी ना तकरीबन सारे मुस्लिम जेड़े ने ना इत्थे साडे मलेरकोटले नकली रगड़ रगड़ के बनाउन लग गए ने
1: ओके
3: भी
1: जी
3: असीं पक्के नमाजियां ए है वो है, मतलब तो हर धर्म च रलेवा बहुत पै गया होया।
1: जी
0: हो जाता है बिल्कुल
3: हां जी हां जी ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਯਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ
1: ਜੀ
3: ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਸੂਝਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਰੂ
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਹੀਏ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਈਏ
0: ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ
1: ਹਾਂਜੀ ਜੀ
3: ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਔਲਖ ਵੀਰਾ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਵਿਆ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ।
1: ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੱਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਗਰਾਜ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3: ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਦਾਨਵੀਰ,
3: ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਟਲੀ ਨਾ ਔਲਖ ਨੇ।
1: ਜੀ
3: ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ
1: ਜੀ,
3: ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਫੇਰ ਸਹੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ,
0: ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜੱਸੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ
1: ਜੀ
3: ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੋਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ
1: ਜੀ,
3: ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਤੋਤਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
1: ਅੱਛਾ ਅਸਲੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ,
3: ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਤੋਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ
1: ਜੀ,
3: ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਾ ਵਿਆਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਵਿਆਸ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਥੱਲੇ ਨੀ ਪੈਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, 4 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100-200 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਮੈਂਟੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਚ ਇੱਕ ਪੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 4-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ
1: ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਜੱਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
3: ਥੈਂਕ
1: ਯੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਮੁਖੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ।

0: पढ़ने पहने हैं
1: बिल्कुल,
0: बट दोस्तों बाज ऑप्शंस है, फिर तू वो करें जो तेरा दिल करता है, ठीक है, वो मोटिवेट होता है, वो खुशी खुशी कर जाता है, वो कर जाता है, उन्हें फिर वही
1: फिर लेक्चर शुरू हो जाता है पुरानी गल जिहड़ी सीडी पै जांदी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये एक जो है फोर्स्ड कह लो उन्होंने उत्ते किया जाता है, जो अपने थोपिया जाता है उन्होंने अपनी पंड चुकाते हैं। कई बार ये होंगे कि माता पिता जो नहीं बन सके जीवन च बनना चाहते थे, चाहते ही बच्चा बने,
0: बिल्कुल
1: घटो घट वो तो बने,
0: अपन उम्मीदा का भार लद दें बच्चों से।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बच्चे एक इंडिविजुअल एंटिटी है
1: जी जी,
0: थोनों ये मनना पेगा, वो थोड़े बच्चे है ठीक है, पर वो एक वक्रा ह्यूमन बीइंग भी है,
1: बिल्कुल
0: जिहदी डिजाइनिंग कुछ डिफरेंट है थोड़े नालों,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो मन के चलना पैना।
0: हाँ
1: जे जिन्नी देर तक ये गल नहीं आएगी।
0: हाँ जी,
1: ते एक होर जिहड़ा आपां कहिंदे ना बलदी ते तेल पै जांदा है, ते आम मैं कई बारी बच्चां नूं मिलदा जां घरां विच आम आपां देखदे आ, एक सब तो वड्डा डायलॉग हुंदा है माता पिता दा कि लोकां दे बच्चे नूं देखो।
0: हाँ जी, कंपैरिजन
1: कंपैरिजन, ये किन्ना क जरूरी है?
0: बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल अनहेल्दी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोगों के बच्चे की भैन भरावां च नहीं होना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: ठीक है, जैलसी डिवेलप होती है, ठीक है, कई बार तो कोई बहुत अच्छा फ्रेंड होता है बार बार उसकी एग्जाम्पल दी है, तो उसको चिढ़ाने लग जाती है, जो देखो ये इदा करता तो मेरे नाल इदा होती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तुसी उसकी अचीवमेंट्स से खुश नहीं होंगे,
1: बिल्कुल
0: तुसी जैलस होना सीख जाते हो,
1: वो एक तरह की गिरावट आनी शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी जिहड़ी है।
0: हां जी,
1: लेकिन ये बहुत ही व्यापक है,
0: बहुत व्यापक है, क्योंकि रीस करने की आदत है सानू,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: ऐसी वही चीज अगे इनकलकेट करते हैं
1: जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बच्चों नू शुरू शुरू दे विच सारयां नू प्रॉब्लम होंदी है जदों उन्हां नू किसे नाल कंपेयर किया जाता है, शुरू शुरू दे विच ओह कहिंदे भी है कि साडे नाल इदां ना करो, पर क्योंकि पेरेंट्स नहीं हटदे, क्योंकि उन्हां नू डराया धमकाया जांदा है और इस नू डिसओबीडियंस मन्निया जांदा है, बच्चों की हौली हौली फाइन ट्यूनिंग हो जाती है और अल्टीमेटली ओही करन लग जांदे है।
1: कई बार ये भी तो हो सकता है कि जो बच्चा देखे कि चलो हूँ मैं उन्होंने बच्चों वर्गा नहीं है जी छो परे,
0: हाँ जी,
1: ते वो जो अपने राह तो भी उतर जाता है,
0: बिल्कुल उतरता है, मैं हूँ ही तुम्हें जी एग्जाम्पल दी,
1: ये कुछ हो रहा है,
0: बिल्कुल हो रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जी अजक जे मापे आ जी हूँ जनरेशन चल रही है, अजक वट्सएप का इंटरनेट का जमाना है,
0: हाँ
1: जो हूँ माता पिता ने ये बहुत ओवर बिजी ने,
0: हाँ जी,
1: ते पहला वाले भी बिजी से,
0: हाँ
1: वो अपना चलो कम कार व्यार करते,
0: हाँ
1: पहला तो हूँ च कि जो फर्क वेखते हो?
0: बहुत फर्क है, देखो इन्ना टेक्नोलॉजी एडवांस है, सब कुछ है
1: जी जी।
0: एक तरह नाल देखा जाए तो अगर तुसी सोशल मीडिया से एक्टिव हो तो थोड़ा इस तरह टाइम बचता है कि तुहानू जाके नहीं मिलना पैंदा, तुसी घरे ही सारयां नू हैलो हाय एक बारी सवेरे करके निपट जांदे हो,
1: वो एक केड़ा वादा है,
0: हां वो इहदा वादा है जे इसनू पॉजिटिवली लो
1: जी जी।
0: लेकिन अगर तुसी पिंग होई नाल दी नाल फोन चुकिया सारे काम छड़ के तुसी मैसेज देखिया फटाफट, नहीं एक चीज का टाइम होना चाहिए कि ए टाइम है मेरा
1: जी जी,
0: इस टाइम जिद्दां बच्चे स्कूल गए है या ट्यूशन गए है,
1: बिल्कुल
0: ए मैं हुण घर दे काम तो फ्री है, ए एक घंटा मैं इत्थे लगा सकदी हां
1: जी जी,
0: प्रायोरिटी देनी पएगी तुहानू, तुसी सैट करना है कि तुहाडे लई प्रायोरिटी की है, जे तुहाडे लई प्रायोरिटी सोशलाइज करना है, मार्केट जाना है, सहेलियां नू मिलना है, तो फिर तुसी बच्चियां तो एक्सपैक्ट ना करो कि उन्हां लई पढ़ाई और जो तुसी कहने ओ प्रायोरिटी होवे, क्योंकि तुसी अपने बच्चों के रोल मॉडल हो, बच्चा जो देखता वही करता है।
1: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल,
0: जे तुहाडे लई हमेशा तुसी उन्हों ए कहने हो नहीं इत्थे तां जाना ही पैना है, नहीं हुण ए आए है हुण तुसी इन्हां नूं अटेंड करो, उन ओ यही सीखेगा कि पढ़ाई पिछे पाई जा सकती है
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: जे तुसी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस उन्हां दी पढ़ाई लई छड्ड दिओ ओ सीखेगा कि पढ़ाई ही प्रायोरिटी है,
1: मैनू लगता नहीं करियर कोई ग्रो करेगा बच्चा जो मन च गल आ गई, जी गल करते वट्सएप वाली बच्चे नूं टीवी लैके देता पर टाइम नहीं दिता, टीवी वर्सस टाइम दा एक मुद्दा आंदा है, यही आपां हुणे गल भी कीती है।
0: हाँ जी,
1: इहदे विच जे आपां होर देखिए कि जे चार मैंबर घर च बैठे आ, पेरेंट्स भी आपस विच इक दूजे नूं भी ओह वट्सएप ते लगे होए आ, ते ओह भी ओह ते बिल्कुल ही इग्नोर हो जांदा बच्चा
0: जिहड़ा, बिल्कुल हुंदा इग्नोर, बिल्कुल
1: ये तू किवें बचाया जा सकदा, इह किन्नी गंभीर गल है,
0: इह बहुत गंभीर गल है, जे तुसीं चाहुंदे हो कि बच्चे साडे नाल कनैक्टिड रहन और ओह फील भी करन, सिर्फ

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंब दी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंब दी, एहसास करो।

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन्दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन्दी सैर नू।
1: मम्मी मिशेश जी दी रचना चन्दी सैर दे नाल ही असी इस कामे फल दा इथे ही समाप्ति करने आ ते अगली कामे फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन। प्यारे दोस्तों।

0: फिर ओदी तैयारी उस अकॉर्डिंग होएगी।
1: अच्छा
0: जिदा जे कोई बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक सेक्टर दे विच जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, तां उन्हूं थ्रेटिकल अपना बड़ा रखना पऊगा, मजबूत रखना पऊगा नाल नाल, क्योंकि ओदे विच बच्चे नूं टेस्ट देना पऊगा, वो टेस्ट कढ़ने पैणगे, ते नाल दी नाल उन्हूं अप टू डेट रहना पऊगा भी कहड़े टेस्ट आ रहे ने, उन्हां दी तैयारी नाल दी नाल करदे रहना पऊगा। 2 साल दे दौरान जदों ओदे ओदा आईटीआई जद तक कोर्स कंप्लीट होगा, ओदे नाल नाल ही उहो बच्चा या तो चलो जे जेकर वो बच्चा अंडर एज है तां वो डिप्लोमा कर सकदा है, अगर वो एज ओदी 18 तक हैगी है तां वो बच्चा फिर पीडब्ल्यूडीज दे अंडर या फिर कोई भी इदां गवर्नमेंट पीएसयूज दे अंडर निकले हुए टेस्ट ने जेडे वो अप्लाई कर सकदा है, ओदी तैयारी नाल दी नाल करी जावे।
1: अच्छा जी, हाँ
0: बट जिवें आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करते हां, जेकर बच्चे ने प्राइवेट
1: जी,
0: सेक्टर च आना है तां उहनूं बच्चे नूं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे विच तेज होना पऊगा, प्लस ओदे कम्युनिकेशन स्किल्स जिहड़े हैं बहुत मैटर करते हैं।
1: अच्छा एक मिनट में ये दसो भी जो वोकेशनल जो कोर्स होंगे ने ते आईटीआई, इन्हों दोनों के खेत्र में की फर्क हैगा?
0: वोकेशनल कोर्सेज जिहड़े के स्कूल्स दे दौरान बच्चे लै लैंदे आ, जिदां कटिंग सीविंग दे भी काफी हुंदे आ, या फिर इसे दे नाल मिलदे जुलदे काफी सारे हो जांदे आ, इलैक्ट्रिशियन वेल्डर इलैक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जांदे आ, तां उहनां दा फायदा इह हुंदा कि जिहड़े बच्चे आईटीआई ज्वाइन करना चाहुंदे आ
1: हाँ
0: उहनां
1: जी,
0: दे लई उह इक प्लेटफॉर्म इक बेस बन जांदे आ,
1: अच्छा जी,
0: उहनां नूं उहनां बारे पहलां ही नॉलेज हो जांदी है ना।
1: अच्छा जी,
0: ते जिहड़े बच्चों ने मान लो आईटीआई या फिर उद्योगिक खेत्र दे विच जाना नहीं है, या फिर
1: हाँ
0: उन्हां
1: जी,
0: ने अगे ग्रेजुएशन करनी है या फिर हायर स्टडीज दे विच कुछ भी होर करना है, तां इहो जे बच्चों दे लई सिंपल अपना 10th तक या फिर 12th तक अपनी सिंपल स्टडी करने दे विच ही बेहतरी है उन्हां दी।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी
1: मैडम साहबाना जी, तुसी बहुत वधिया जानकारी साडे स्रोतों के नाल सांझी कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: हाँ
0: थैंक
1: जी,
0: यू
1: स्रोतों का असी धन्यवाद करते हैं जिन्ह ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े प्यार नाल सुनिया,
0: जी,
1: ते अगली बार फिर मिलांगे प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुखवीर जोगा अते दुआबा रेडिया वल्लों शुक्रिया जी।

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए,

0: एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी मां नहीं, मेरी ता अपनी बनी मां नहीं। बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोले नी, काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोले नी, मैनू पाने दी डोले नी। शुक्रिया साथो, बहुत बहुत मेहरबानी।
1: प्यारे श्रोतियो, सुरेंद्र भोगल जी तो बाद हुण असीं सद्दा देण जा रहे हां इंग्लैंड वास्ते शायर तारा सिंह जी। तारा सिंह जी वैसे दे पंजाब दे जिला जलंधर दे एक बड़े पिंड कोकड़ पिंड नाल संबंध रखते ने, ते बहुत लंबे समय तो वो बर्मिंगम दे नेड़े रहिंदे ने। उत्थे वो इंडियन वर्कर एसोसीएशन दे नाल जुड़े हुए ने। इस दे नाल दी नाल वो अपनियां मनोभावनावां नूं जिहड़ा आ ओह कविता दे विच व्यक्त करदे ने, ते ओह साडी काम महफिल दे विच पहली वारी आ रहे ने, उहनां दा असीं स्वागत करदे हां। तारा सिंह जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दे मंच उत्ते निघा स्वागत है।
2: मैं तारा सिंह तारा एक गीत पेश करन लगा। गीत है झूठे वादे छूणा। गीत दे बोल ने जिंद वादियां च डुब गई जिसम तरी जांदा, वो डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। जदों बंदा डुब जांदा आ उहदी जान निकल जांदी आ, ते जिहड़ी मुरदा शरीर आ उह ते तरदा पाणी दे। इस तरह साडा आवाम मुरदा आवाम जिद्दां हुंदा तुरिया फिरदा है। सो मेरा मतलब जिहड़ा जिस्म शब्द है वह आवाम लई है। जिंद वादियां च डुब गई जिंद

जे डूब गई जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी बादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, ओ अपने परछावे तो

जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादिया चे डुब गई, जिंद वादिया चे डुब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।